एक रहे सब जान जान के लड़कों को ताड़ो मत मासू मेरा बच्चे इन्हें मारो मत माना कि गर्मी बहुत है लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ बेबी जैकेट उतारो मत